आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें

जिसके जाने जो मुलाकात के नाम जान जान जिस करनी या आज आप इंसान से मिल सकते हैं।

चेत आवन का सद का सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फतह, चौकियां चंडे बंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा दी सावे बुला रे। खालसे जी नू नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध विवेक रहत रक्षा दान। खालसे जी नू श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरो

निर्भउ नाम जपहु हर रंगी पर तन दुख किस पाप ना फिड़े जम जंदार न आवै नेड़े तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई

कमल कुसुम चंपक के नाम गौराव कान रा कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जन सम्मिल श्री राग वै गाव पाचो संग बरंगन लाव बैरारी करनाटी तरी गौरी गाव आसावरी ते पाछे सिंधवी लापी श्री राग सिंह पाचो थापी सालू सारंग सागरा और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुण कुम हमीर अष्टम

भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूं जोगिया बैरागी बना, कबहू सन्यास भेस बन कह दिखावई। कहूं पौन हारी कहूं बैठे लाए तारी, कहूं लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पै लगावे बारी, कहूं डंड धारी होए गए लोगन भरमावई। कामना अधीन सदा कामना अधीन परयो नाचत है नाचन सो, ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकारे परे सीत काल, कुंचर औ गदह अनेकदा पुकारही। कहां पयो जो पै कलवत्र लियो कांसी बीच, चीर चीर चोरटा कुठारण सो मारही। कहां पयो फांसी डार बूढ़ो जड़ गंग, धार मार टार डार फांस ठग मार मार डारही। डूबे नरक तार मूड़ ज्ञान के बिना विचार, भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहे तेजो पै पाई है अतापनाथ, तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तेजो पै पाई अजाप देव, पूदना सदीव तू ही

देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मानस सबा एक पैन एक को प्रमाओ है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेस को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद या तस आप को रलाओ है अल्लाह अपेक सोई पुराने ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब

मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभिखंग अयुनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परयंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अचयाद अद्वै अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अपंगे नमो आद अपंगे किते कृष्ण से कीट कोटाए उपाए उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आदत वह अविनाशी परयंग परा परन पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूप अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूति न जन्मंग न मरनंग न वर्णंग न व्याधंग न जन्मंग न मरनंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स्नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न ताते न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुपूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभिखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग

नासोकं नासाकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न परमं न सर्वं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं सरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेस के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पछर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हर्म जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औषधि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी

लेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध व्यवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह के देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग पोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर बीतोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देव पाक्या कहूं देव पानी कहूं राज विद्या कहूं राजतानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र तारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं

अनतुट तेजन खुट भंडार दाता तुरंत सर्वंग प्रकार अनुपूत तेजन छिजगाद करता सदीव हरता सनादासन अडोल अनुपूत कर्म दाता दयाल अनुपूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र प्राप्त।

शास्त्र सिमरत उचार, कई भजत एक पग निराधार, कई नेह देह कई गेह वास, कई प्रमत देश देशन उदास, कई जल निवास कई अगन ताप, कई जपत उर्द लटकंत जा, कई जपत जो कल्पंग प्रजंत, नहीं तदवतास पायत नांत, कई करत कोट विद्या विचार, नहीं

एक है न कर्म है न धर्म है न अजन्म है अपेक है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अछेद है अभेद है न रंक है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज

सोर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे अनरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनले संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दुख दहंती ज्ञान जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रताप।

कई मूड़ पात्र पूजा करंत कई सिद्धनाथ सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अनछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अंतवै अनास सब रोग सोग ते रहत रूप अनपह अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरद दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजक नाथ जल तल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार जानी ना जाए जह रूप रेख कह पास तास कह कौन पीख कह नाम तास है कवन जा जय सत्र मित्र नहीं

अखंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार पार ना पाए सकै पद्मापत वेद देव अभेद उचार रोजी ही राज विलोकत राजक रोख रुहान की रोजी ना टारा कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अंगमेव न पेव लख्यो परम शिव परमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद स्योंकन श्री पद्मापद पाए आदि अनंत गाद द्वैख सो भूत भविक भवान अपै है अंत विहीन ना तम आप अदाग अदोख अछिद्र अच्छा है लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता व्रवै है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय देह विहीन सने सबूतन देह विरक्त अगे

से चतुरानन से रूप नारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सकै नहीं पारु मां पद सिद्ध सनात सनंतन तिहायो ध्यान तरो तहको मन मै जैको अमितो जिस भै जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान भेद निर्पाण सफै पचहारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेद।

अत्र के चलैया छत छत्र के तरैया छत्र धारियो के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान।

देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग तान को अपीस कही अत है। रंग मैं रंगीन राग रूप मैं प्रवीण और कहूं पैना दीन साध अधीन कही अत है। पाई है न पार तेज पुंज मैं अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है। हाथी की पुकार पल पांच पौचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। ये ते इंद्र द्वार के ते ब्रह्मा मुख चार के ते कृष्णा अवतार के ते राम कही अत है। के ते ससरासी के ते सूरज प्रकाशी के ते मुंडिया उदासी जोग द्वार कही अत है। केते महादीन केते ब्यास से प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कही अत है। करते हैं विचार पैना।

काशी महारूप हूँ के राशि है अनासी कै कै मानिया जंत्र हूँ ना जात जागी बाप हूँ ना माए तागी पूर्ण प्रभागी सो छटा के अनुमानिया तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कै कै जानिया तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्ध

सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है।

काल हूँ के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को पोखत है के वृद्धता के बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को कार है। देवन को देव है निरंजन अपेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कार है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है नान नार है। विश्व को पर्ण है के अपदा को हरण है के सुख को कर्ण है के

राग गुजरे महला पंजवा काहे रे मन चितवै उदम जा हर हर जियो परया सैल पत्थर में।

सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जा।

हमरे दुष्ट सबै तुम गावहो, आप हाथ दे मुहे बचावहो। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिया, सब बैरन को आज संघरिया।

उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सुवारी सेवकन को

कैठा सगरे सृष्टि दिखाए अचंभा आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उवार असिख संहरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे असुद जताउ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखद होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे।

जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास एक ना हुकुम समाए लै एक ना हुकुमे करे विनाश एक ना भाणे कढ़ लै

विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग विरे जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सुला विस्माद ओजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद वेखे आदर।

0: सच बुलाया श्री माई गुरु।
1: गौरी नगर करे जे आपने तन तेरी सतकृपा जो बोते जन पर मैं ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनो लोग सुबाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचाओ आप गवाया जिन

मूर्ख पंडित हिकमत मस्जिद संजय करे प्यार तरमी तरम करेगा बाबा मंगे मोह द्वार जति सितावे जुगत न जाने छड़ पे घर बार सबको पूरा आपे खूब घटना कोई आखे